0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्ट.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन का विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: to montforthalls.co.uk or call 0116 233 3111. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises.
6: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बर्तन और एक्स्ट्रा जीवन दान
0: Catch the brand new season of Big Boss, hosted by Salman Khan. Starts this Sunday at 9:30 p.m. and every day on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house only on Jio Hotstar.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
11: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
12: Krishna Krishna, Hare Krishna.
13: Chahakti hai khag, lehrati hai taruvar, hilore marti hai talaiya. शाम रंग में रंगने को आया जो है सबका कन्हैया लाइका रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं
14: लाइका
15: कूल म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू।
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.
3: Just...

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Simon James. The M1 North still looks a little bit heavy from Lutterworth to the M69 at Leicester. Junctions 20 to 21 did have an accident earlier on. Elsewhere for the M6, heading north coming up from Warwickshire, was a breakdown earlier. Fully clear again at least now. M69 to Nuneaton, junctions 2 to 3. Southbound, there were a few delays after a breakdown earlier on. Junctions 2 to 1 after the M69. Usual build-up on the Bromsgrove bypass, the A38 with the roadworks. Also at Tisley, some hold-ups on the Warwick Road A41. There's temporary lights. This is around Battery Way. And if any into Stourbridge in the West Midlands, still that closure to through traffic of Racecourse Lane. That's the latest traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica
0: Radio.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar. One performer.
1: Countless personalities.
4: A whole universe of entertainment.
1: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
4: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
1: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: The wait is finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
10: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
9: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
11: Maharaja Tours के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स फोर स्टार होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
12: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
1: It's back and it's bigger.
4: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
1: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
4: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
1: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
2: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
13: मधुबन में जो कन्हैया किसी को
14: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है, जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है, श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा, कितना लुभावना है ये कहना। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से।
0: लाइका, दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल All protected.
4: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
5: लाइका रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन। From Haycock's Green to Small Heath, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Your wake-up call. This is Kajal on Breakfast. Leica Radio.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: एस जी बर्मन के म्यूजिक पर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आपने ये गीत सुना। सुपर हिट फिल्म आराधना से और उससे पहले बड़े दिल वाला, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। क्या म्यूजिक दिया है और क्या गीत लिखा है। ये थी फिल्म बड़े दिल वाला। और लीजिए, दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज फ्राइडे के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज भारतवासी जहां कहीं भी फैले हुए हैं, जो भी आज जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं, सभी को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। और बस यही कहूंगी कि श्री कृष्ण आपके जीवन की सारी तकलीफ दुख परेशानियों को हटाकर उसकी जगह सुख शांति आपके जीवन में भर दे। मजे के साथ आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए। आज उसके बारे में बात होगी क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और बता दूं कि आज फ्राइडे के दिन भी मैं ऋतु शर्मा आप ही के साथ रहूंगी। अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने सुनवाऊंगी। चिंतन भी होगा, बातें भी होंगी, आपके मैसेजेस भी शामिल रहेंगे। और हाँ, याद रखिए आज मौसम थोड़ा गड़बड़ है। फिलहाल तो गड़बड़ है, लेकिन सुन रहे हैं कि दोपहर के बाद अच्छा हो जाएगा। और होना भी चाहिए भाई, हमें मंदिर भी तो जाना है, कान्हा के दर्शन भी तो करने हैं। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जो भी मेरा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है इस शो में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.15 भारतीय रुपए। याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
5: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets £20. Book now at demontforthall.co.uk or call 0116 233 3111. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना.
11: कथास यूट्यूब. तो इस बार बिग बॉस दे रहे सभी घर वालों को एक नहीं दो दो चांस. सो से खेलने का नो नो चांस. बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान. कथास तो मेरी जान.
12: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
7: LemFi means quicker and safe way to send money.
12: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
7: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
12: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
13: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
14: Jab saamne tu aaja.
15: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
16: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, कितना मीठा गाना था और कितनी मीठी धुन बनाई थी नौशाद ने। फिल्म साथी से लिया था ये गाना, जिसमें थे राजेंद्र कुमार और साथ में थी वैजयंती माला, और जिसे आपने अभी सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिसमें ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को भी जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आपके मैसेजेस पर एक नजर डाल लेते हैं। और ये जो साथी फिल्म का गाना था, ये डेडिकेट करते हैं हमारे विजय गुडोरी जी को, जो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। सो थैंक यू, आपका स्वागत है इस शो में। थैंक यू हंसा जी, थैंक यू महेंद्र बजारिया जी, वियाना में अनिल सोनी जी हमें सुन रहे हैं, विनोद जी, भरत गंगोराम जी, अर्जुन जी, संध्या जी, दीपक वोरा, तोची जी, हसुमती जी, मालती जी कहती है मेरा तो दिन बना दिया राजेश खन्ना का गीत सुनाकर, गुनगुना रहे हैं भंवरे। ब्यूटीफुल गाना, और आज मौसम भी बहुत सुहाना है, तो उस मौसम में मुझे लगा ये गाना तो बजना चाहिए। मजा आया जानकर, अच्छा लग रहा है। थैंक यू हरीश खत्री जी, सुनीति जी, प्रज्ञा देसराज, बसंत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, जन्माष्टमी की। और हमारे राजेश जी कहते हैं कि दो शानदार गीतों के साथ आपने शुरुआत की है, खासतौर पर जो पहला गाना मुझे बहुत पसंद है, जीवन के दिन छोटे सही। चलिए ये गाना आपको डेडिकेट कर देते हैं। और इसके अलावा अरविंद जी आप हमारे साथ हैं, कहते हैं दो गानों के साथ अच्छा मूड बना है हमारा, तो बस साथ देते रहिए एक बजे तक, सुनते रहिए अच्छे अच्छे गाने, यूं ही सुनवाती रहूंगी। एंड मिसेस शेख राजकुमार जी, आपको भी हमारी जय माता दी और राम राम। विजय गुनवा जी साथ में है, जासू जी, एंड ऑफ कोर्स हमारे हेतल सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये है हैरी भैया, आपका मैसेज पहली बार आया है, लेकिन आपको जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां। हिमांशु जी, मृदु जी, वंदना गुटका, ऑफ कोर्स हमारे गिरीश जी जो कि इंदौर में प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो सभी का स्वागत है इस शो में। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अब सुनवाने वाली हूँ आज के प्रमुख समाचार। चलिए सुनते हैं।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा, लाइक अ रेडियो।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबरें हैं भारत से। इसरो का नया स्पेस मिशन है जिसके बारे में आप सुन रहे होंगे। इसरो ने अपने GSLV F-17 रॉकेट के जरिए EOS-05 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात होकर भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार 24 घंटे सातों दिन निगरानी करेगा। आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का 5,253वां भी वा, यानी कि भगवान का आज 5,253वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन से लेकर देश भर के मंदिरों को बेहद खास तरीके से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज उमड़ रही है। भारतीय वायुसेना IAF ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है खगंतक का सफल ट्रायल पूरा किया है। इसका नाम है खगंतक 243 और ये डिफेंस सेक्टर में भारत की जो प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता यानी कि सटीक निशानेबाजी जिसे कहा जाता है को बहुत मजबूत बनाएगा। आज घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 500 से ज्यादा पॉइंट उछलकर 76,650 के पार चला गया। वहीं निफ्टी भी 23,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईटी और बैंकिंग शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी आज देखी गई है। और नेपाल में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा के बीच भारत ने राहत सामग्री से भरे 2 एयरक्राफ्ट काठमांडू भेजे हैं। संकट की इस घड़ी में भारत की तरफ से लगातार रेस्क्यू और मेडिकल एड भेजी जा रही है। अब कुछ समाचार विदेशों से। चाइना के आज उत्तर पश्चिम क्विंघाई प्रांत में तड़के आज सुबह 5.1 तीव्रता का अर्थक्वेक या भूकंप दर्ज किया गया और भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। उधर विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन दौरे और रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने अपना रुख फिर से साफ किया है और कहा है कि भारत तेल खरीद जारी रखेगा और शांति वार्ता यानी कि पीस टॉक में मध्यस्थता के लिए तैयार है। बैंक ऑफ कनाडा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ घटते ट्रेड रिलेशंस और टैरिफ की अनिश्चितता के कारण महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का खतरा फिर से बढ़ रहा है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा बदलाव करते हुए ओपन एआई ने अपना नया और एडवांस एआई मॉडल GPT-6 एस्ट्रा लॉन्च किया है और ये मॉडल केवल सवालों के जवाब देने की बजाय खुद कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने और मल्टी स्टेप टास्क पूरे करने में सक्षम है। समाचार समाप्त होते हैं, यही थे आज के प्रमुख समाचार।
1: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।

0: आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में बहुत जगह दही हांडी का खेला भी खेला जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और वो माखन की मटकी को तोड़कर अपने दोस्तों के साथ चोरी छुपकी खाकर यशोदा मैया को परेशान भी किया करते थे। तो कृष्ण की इस लीला को दही हांडी के रूप में आज कई जगह खेला जाता है। और आज मथुरा वृंदावन में तो जो माहौल होगा उसे मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं 3 बार मथुरा वृंदावन के दर्शन कर चुकी हूँ और वैसे भी हमारे घर से मथुरा वृंदावन काफी पास है, तो हमको जब भी समय मिलता था हम वहाँ हो आते थे। और मैंने 3 गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाई हुई है, लेकिन काफी साल हो गए हैं और मेरी इच्छा है कि मैं फिर से जाऊं। और आज मथुरा वृंदावन में तो होगा ही बहुत ही खूबसूरत माहौल, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज द्वारका में क्या हाल होगा। पहले मैंने द्वारका का मंदिर नहीं देखा था, मैं वहाँ नहीं गई थी, तो मैं सोच नहीं सकती थी कि वहाँ क्या हाल होगा। लेकिन जब से मैं द्वारका होकर आई हूँ, तब से मुझे लग रहा है कि ओह माय गॉड, आज के दिन लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें द्वारकाधीश के दर्शन करने को मिलेंगे, वो भी जन्माष्टमी के दिन। बहुत ही बड़ी सौभाग्य की ये बात है उन लोगों के लिए। खैर, आज हमारे जितने भी साथी सुन रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं लगातार, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां। मनीषा वोरा, हंसा वोरा, मनीषा शाह, अमिता जी, थैंक यू। ये है हमारे साथ पुरुषोत्तम एंड संतोष जी, अर्जुन जी, जैमिनी जी, मालती जी, देसराज बसंत जी, संध्या भावसर एंड मानू जी। स्वागत है आप सभी का और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां।
1: Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Like a radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 106.08 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: किशोरदा की आवाज में ये गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार होगी आपकी मेरी फिर से मुलाकात।

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। आज है 4 सितंबर और आज हमारे बहुत सारे साथी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हमारी ओर से ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। और आज बहुत बड़ा दिन है, आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनके अलावा मैं आज और किसकी बात कर सकती हूँ। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में बात करने से पहले मैं जरूर ये कहूंगी कि देखिए, आज मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन है, लेकिन शायद पहले से कम धैर्य है। उसके पास संवाद करने के लिए अनेक माध्यम हैं, लेकिन फिर भी भीतर का अकेलापन बढ़ता जा रहा है। छोटी से छोटी असफलता उसे भीतर तक हिला देती है। संबंधों में आया मामूली तनाव उसे निराश कर देता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए डिप्रेशन जैसे शब्द सहजता से ही बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। आसानी से लोग कह देते हैं, अरे डिप्रेशन हो गया था, जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं हो। और ऐसे समय में प्रश्न ये नहीं उठता कि कठिनाइयां क्यों आती हैं। प्रश्न ये है कि कठिनाइयों के बीच मनुष्य स्वयं को कैसे संभाले। और इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के जीवन में छिपा है। यदि श्री कृष्ण को केवल मंदिर में विराजमान भगवान के रूप में देखा जाए तो हम उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही सीमित भाग ही देख पाएंगे। कृष्ण को समझने के लिए उनके जीवन को देखना होगा, एक ऐसा जीवन जिसमें जन्म से लेकर अंतिम समय तक परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और तभी तो वो कहलाए हम सबके चहेते श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और ये समय बहुत खास है क्योंकि ये केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार का धरती पर आगमन था। हमने सुनी है कहानी कि मथुरा का कंस, राजा कंस बहुत अत्याचारी था। जब उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराया तो आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। और ये सुनकर घबराए कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार यानी कि जेल में बंद कर दिया और उनकी पहली 7 संतानों को मार डाला। लेकिन जैसे ही 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में चमत्कार होने लगे, क्योंकि ये जन्म सिर्फ एक बालक का नहीं, विष्णु भगवान का जन्म था, श्री कृष्ण का जन्म था। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए, वासुदेव जी की बेड़ियां टूट गईं और कंस के डर से वसुदेव जी नवजात कृष्ण को टोकरी में रख कर उफनती यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। मूसलाधार बारिश में शेषनाग ने अपने फन से बालक कन्हैया को छांव दी और गोकुल में भी नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक कन्या जो योग माया थी उनका जन्म हुआ था। वसुदेव जी ने कान्हा और यशोदा जी को बदल यशोदा जी को के
पास कान्हा को लिटा दिया और योग माया को लेकर मथुरा वापस आ गए। देखिए जन्म से ही कितनी खास बातें हुई। रोहिणी नक्षत्र, भादों का महीना, आधी रात, जब दुनिया सो चुकी थी। सोचिए विष्णु जी के 8वें अवतार थे, देवकी की 8वीं संतान थे और 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन ही जन्मे थे और उनका जन्म हुआ था अंधकार भरी जेल में। अंधकार भरी जेल जो अज्ञानता का प्रतीक है और कृष्ण का जन्म ज्ञान और प्रकाश के आगमन का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती पर लेना सिर्फ एक महान राजा या बालक का जन्म नहीं था, बल्कि ये हमारे मानव इतिहास, धर्म और जीवन दर्शन का सबसे बड़ा मोड़ था। शास्त्रों और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उस समय धरती पर कंस, जरासंख और दुर्योधन जैसे अत्याचारी राजाओं का बोलबाला था और आम जनता त्राही त्राही कर रही थी। और तभी तो देखिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अगर श्री कृष्ण जन्मते नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमर ज्ञान हमें कैसे मिलता? मानव जाति को भगवत गीता जैसा महान दर्शन नहीं मिलता अगर श्री कृष्ण नहीं जन्मते। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी तनाव, मोह और दुविधा से निकलने का सबसे सटीक गाइड है। आज भी आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब उस छोटी सी भगवत गीता में मिल जाएगा। कृष्ण के जन्म से पहले लोग अक्सर किस्मत, भाग्यवाद या कर्म कांडों में ही उलझे रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म यानी कि अपने सच्चे मन से अपना कर्तव्य करना ही सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। और देखिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नियमों और मर्यादाओं में रहकर जीवन जिया, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है जिन्होंने जीवन के हर रंग को पूरी तरह से जिया। एक बालक के रूप में नटखट बनकर, एक प्रेमी के रूप में राधा के प्रति निश्चल प्रेम और सुधामा के साथ अटूट दोस्ती निभाकर, और महाभारत में बिना हथियार उठाए पांडवों को जीत दिलाकर। श्री कृष्ण के जीवन से, उनके जीवन के हर पहलू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन कोई बोझ या दुख नहीं, बल्कि एक उत्सव है, एक लीला है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, जैसे श्री कृष्ण ने जेल में जन्म, बचपन से ही उन्हें मारने की साजिशें हुई, उन सब में भी मुस्कुराते रहे। जब पूतना उनका वध करने आई, जब शेषनाग ने उन्हें डसना चाहा, और भी हजारों श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उन सभी विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। और उन्होंने मुस्कुराते हुए ही अपने कर्तव्य को कैसे पूरा किया जाता है ये संदेश दिया, और यही उनके जन्म का सबसे बड़ा संदेश है मानव जाति के लिए। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान है, विष्णु का अवतार है। आज सारी दुनिया में उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण के जन्मदिन की आज एक बार फिर से आपको ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तक ए ब्रजवाला। श्री कृष्ण के जन्मदिन पर आज ये भजन सुनवाया और आप में से बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भजन सुनाइए, तो जरूर सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये था आज का चिंतन, और आज का चिंतन श्री कृष्ण को समर्पित और उनके भक्तों को समर्पित। श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है वो कमाल का है। और देखिए, उनके बारे में कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण राजा थे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और उन्होंने राजा होते हुए भी शस्त्र उठाने की बजाय अर्जुन के सारथी बनना पसंद किया। आज के समाज में देखिए, जहाँ पद के आधार पर काम को छोटा बड़ा समझा जाता है, वहीं कृष्ण बताते हैं कि काम की गरिमा पद में नहीं, उसके उद्देश्य और उसकी निष्ठा में होती है। श्री कृष्ण भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। वो चाहते तो अपनी शक्ति से युद्ध का परिणाम क्षण भर में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य को उसकी जिम्मेदारी स्वयं निभाने दी। वो मनुष्य को आश्रित नहीं बल्कि सक्षम बनाना चाहते थे। वो तो भगवान थे, चुटकी बजाकर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक इंसान रहकर ही संभव है, ताकि लोगों को ये समझ आए कि अगर ये इंसान ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही संदेश दिया श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, और श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनकर इस मानव जाति को। बातें बहुत सारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में बातें पढ़ना। कुछ बातें मैंने शेयर की और आज के चिंतन को आपने पसंद किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू हंसा जी, थैंक यू विजय गुडूरी जी, अमिता जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू। एंड नलिनी जी, मृदु जी, अर्जुन जी, महेंद्र बजारिया जी, रागिनी जी, रोशनी, फतेह पटेल, डॉक्टर अशेख पटेल, अरुणा जी, संध्या जी, रोहित, शेखर आनंद जी, रानी जी, प्रतिभा, चंदू जी, उल्लास जी, प्रज्ञा, भावना, अरुणा जी, मनीषा शाह, बहुत सारे नाम है आप सभी का, थैंक यू। और चलिए चिंतन को समेटते हैं और एक बार फिर से आपको देते हैं जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel, at all protected.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: નવરાત્રિની ધમાકેદાર રાતો માટે થઈ જાવ રેડી. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Laika Radio.
11: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre, Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio Partner Laika Radio.
12: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
13: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
14: It's here. Laika Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Laika Radio in Birmingham is a part of Laika, London's number one Asian commercial radio group.
15: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today. 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
14: On this week's Laika Extra podcast, Raj Badden and Kush talk to the Diwali story.
16: The three reasons why we did Diwali story. One was to address this issue of mythology. It's not. It's our DNA. It's our history. It's actually 14,350 years old. And really bring Lakshmiji right to where she belongs in relevance to Sita.
14: Laika Extra is here. Search for our podcast, Laika Extra, on all major streaming platforms.
17: Laika Radio.
14: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
18: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या खूबसूरत भजन है ये, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे साथ साथ बहुत सारे साथियों का मैसेज आया है कि ये गाना अच्छा किया आज आपने बजाया, या कहूँ भजन। और ये मुझे बचपन से पसंद है, और जब मैं छोटी थी तो मुझे गाने का शौक है ही शुरू से। तो कोई मुझे कहता था जैसे कि अगर कोई आ रहा है तो यही मैं भजन गाकर सुनाती थी। तो ये मेरे बचपन से मेरा फेवरेट गाना है, एंड आप सबको भी बहुत पसंद है। मुझे आज ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्चुअली है बहुत सुंदर। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो क्या धुन बनाई है। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से लिया था, जिसमें दो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, एक तो सत्यम शिवम सुंदरम और एक ये वाला। तो चलिए, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, और आई एम श्योर आप सबके घर में या तो फलहार बन रहा होगा, या फिर आप टेंपल जाने के लिए गाड़ी में होंगे, या तो फिर आप दर्शन करके लौट रहे होंगे। तो आज तो काफ़ी बिजी रहने वाला है, और देखिए आज फ्राइडे का दिन भी है, तो बस जो भी कर रही है करते रहिए, आज के दिन का मज़ा ही कुछ और है। और इसी माहौल को बनाए रखती हूँ, एक और ऐसा ही गीत सुनवाती हूँ आप सबको।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Manoranjan with Ravi Sharma.

0: आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था रविंद्र जैन का। और ये गाना भी, ये भजन भी आप सभी ने पसंद किया है, संध्या भाव सर, भारती जी, अरुणा जी, शुमिला मंगर, जासू जी, आप सबका कहना है कि ये मेरा फेवरेट गाना है। वीरेंद्र चौधरी जी, थैंक यू, आपका मैसेज आया है जन्माष्टमी की, आपको भी ढेरों बधाइयां। हंसा बोरा जी, थैंक यू। सलमा जी कैंट में सुन रही हैं, भावना जी हैं हमारे साथ, वंदना गुटका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, एंड फारूक मोहम्मद जी आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। और कुछ बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी सोच के बताती हूँ, फिलहाल सुनवाती हूँ एक और गाना, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ।
1: दिस इज Leica रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
0: तो ध्यान से सुनिए, ये इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है, और ये संदेश है मर्सिडीज बेंज वेंस की ओर से, और इसके साथ ही ये मैसेज भेजा जा रहा है Leica रेडियो नेटवर्क के सहयोग से। आप जब खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, बल्कि आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर निर्भर करता है। इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके लिए लाया है अप टाइम प्रॉमिस, आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज है, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग, और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब अब एक ही जगह, मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अपने अपटाइम प्रॉमिस के बारे में जानें और सोचें। नियम और शर्तें लागू रहेंगी। मर्सिडीज बेंज वैन्स अपटाइम प्रॉमिस, कुछ पात्रता मानदंडों और बहुत वाहन की अनुकूलता और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विस करवाने पर निर्भर करता है, इसलिए नियम और शर्तें लागू होंगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए mbvans.co.uk/uptimepromise।
1: ये है
2: Leica रेडियो
1: फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में द ट्रेन फिल्म से लिया था ये गाना, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से। और ये गाना नाम करते हैं परविंदर मथारू के नाम पर, और साथ ही साथ हमारी मालती जी के नाम पर, जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और राजेश खन्ना की बड़ी फैन है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
1: Leica Extra podcast update.
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ चुका है, नया एपिसोड आ चुका है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का, और इसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, जिसे होस्ट किया है राज बदरन खुश ने। और लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
5: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Banana function lakha hua hai.
8: Leicester Falcon Cash and Carry.

0: लीजिए लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आपने सुना, कब क्यों और कहां फिल्म से। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो आपके लिए लाए हैं NKN मीडिया, फिर से वापस आया है 5 से 6 सितंबर यानी कि कल सैटरडे एंड संडे 6 सितंबर को एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे वहां पर अरब अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकरी। फ्री एंट्री है, रजिस्टर कीजिए एट nknproptyexpo.com पर, nknproptyexpo.com पर। और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: The £1 aaj aapko dega 127 Bharati rupaye, 375 Pakistani rupaye and 166 Bangladeshi takas.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 106.08 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154846.

0: लता जी की आवाज में महबूबा फिल्म से था ये गाना, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की फिल्म, म्यूजिक बाय आरजी बर्मन, और उससे पहले आशा भोसले और किशोर दा की आवाजों में ये वादा रहा, हम सभी का फेवरेट गाना, जिसमें थे ऋषि कपूर और साथ में थी पूनम ढिल्लन। और आज आपको बता दें कि ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है। कहने में बहुत अजीब लग रहा है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ऋषि कपूर हमारे बीच अब नहीं रहे। मतलब कितनी छोटी सी उम्र में, 67 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अभी भी हमारी आंखों के सामने आता है जब भी उनका कोई गीत सुनती हूँ, और फिर सोचने पे मजबूर होती हूँ कि अरे ऋषि कपूर इतनी जल्दी चले गए। कितने सारे लोगों के फेवरेट हीरो रहे हैं, मुझे भी उनकी फिल्में उनके गाने बहुत पसंद हैं। उनकी फिल्म से ये गीत सुनवाया आप सभी का फेवरेट तू तू है वही, और ये उनके सारे फैंस को डेडिकेट किया। और आपको बता दें कि प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है, आप हमारा साथ दे रहे हैं, अपने मैसेजेस भी भिजवा रहे हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि कल मेरा फास्ट है तो खाने पीने की किसी भी चीज़ की फ़ोटो मत भेजना, तो किसी ने भी नहीं भेजी सिर्फ संध्या को छोड़कर। संध्या आपने मालपुओं की फ़ोटो भेज दी, कितना पानी आ गया उसको देख कर हूँ मैं, अब क्या करूँ। अब अगली बार जब आप मिलोगी ना तो मालपुए बनाकर लाने पड़ेंगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मालपुए। और आपने जो पानी मुँह में लाया ना उसका चाय पीकर काम चलाना चला पड़ा, क्योंकि खा तो सकते नहीं थे कुछ। आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू। और घर में फलार की खुशबू उड़ रही होगी, या आप कर भी चुके होंगे, और वैसे आज तो फलाहार ही किया जाता है, लेकिन जन्म के बाद खाना भी खा लिया जाता है, और ये त्योहार ऐसा ही है कि आराम से बढ़िया माल पकवान खाओ, भगवान का जन्मदिन था। जन्मदिन है तो चलिए बातें करेंगे उस बारे में भी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends, featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Odisha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410.
6: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
7: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
8: From Great Bar to Perry Bar. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
9: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है. श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा, कितना लुभावना है ये कहना. आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से.
8: लाइका Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: खूबसूरत गाना आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज में, और ये थी फिल्म गुमराह जिसकी हीरोइन थी माला सिन्हा, और माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। रवि का म्यूजिक था, शानदार म्यूजिक, और इस गाने को आप सबने पसंद किया है। अनिल सोनी वियाना से कहते हैं कि ऋतु मेरा फेवरेट गाना है। अमिता जी आपका ये गाना बहुत ही फेवरेट है, उल्लास आपको भी ये गाना अच्छा लगता है, तो चलिए आप सबके नाम पर करती हूँ ये गाना। और हमारे विजय गुडूरी जी आपका मैसेज आया है, कहते हैं ऋतु मैंने सुना था एक बार आपने कहा था कि मैंने चाय छोड़ दी है। आपने बिल्कुल सही सुना था, मैंने चाय सच में छोड़ दी थी, लेकिन बहुत मुश्किल है चाय को छोड़ना। तो पहले मैं आपको बता दूँ, सच मैं वैसे बताती नहीं हूँ, मैं 3-4 कप बड़े बड़े भर के चाय पीती थी, देन मुझे लगा कि यार ये चाय बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि कम करती हूँ, तो बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ा, लेकिन फिर मुझे थोड़ी क्रेविंग हुई तो मैंने कहा चलो कट डाउन कर देती हूँ। फिर मैंने 2 फुल कप चाय पीना शुरू किया, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, मतलब वही शाम के टाइम पर, एंड देन फिर मैंने उसको भी कट किया। अब मैं 1/2 कप मॉर्निंग में पीती हूँ और 1/2 कप इवनिंग में पीती हूँ, और यहाँ आती हूँ तो कभी कभार जब मुझे लगता है कि यार चाय की थोड़ी ज़रूरत है तो थोड़ा सा ले लेती हूँ इंग्लिश टी। बाकी तो फिर मेरा रूटीन में तो वही, एक मॉर्निंग में 1/2 कप और एक इवनिंग में, वही चल रहा है। और मैं ये भी छोड़ना चाहती हूँ पर छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं जाती हूँ तो वो फिर चाय पिला देते हैं, यू नो डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ मॉर्निंग की रखूँ और फिर मॉर्निंग में भी छोड़ दूँ, लेकिन आपने सही सुना था। और गुरुदेव कहते हैं कि क्या आप फास्टिंग में ड्रिंक कर सकती हैं? हाँ, मतलब ड्रिंक मतलब पानी, जूस ये सब पी सकती हूँ, वो वाला ड्रिंक नहीं। और फास्ट में ये जो जन्माष्टमी का फास्ट होता है, ये खाते पीते रखा जाता है आराम से, ना फलार कर लो, इसमें अन्न नहीं खाया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन आप फलार कर सकते हैं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और जो सेंधा नमक की चीज़ें हैं वो भी खा सकते हैं, तो वो भी मैं खाऊंगी। अब भूखा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और बिना नमक के तो बिल्कुल ही नहीं मैं रह सकती हूँ। लेकिन हाँ, फिलहाल एक नियम होता है कि आप दिन में एक ही बार खाएंगे या भगवान की पूजा करके खाएंगे, ये नहीं कि फास्ट है तो सवेरे सवेरे खा लिया, नहीं, मंदिर जाकर दर्शन करके यू नो तब ऐसे खाएंगे, तो वो एक नियम का हम लोग पालन करते हैं, सो ऐसा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और अब एक और खूबसूरत सा गीत आप सबके नाम कर दिया जाए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तो आपने अभी अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज सुनी कविता कृष्णमूर्ति के साथ. एंड थैंक यू नलिनी जी आपके मैसेज के लिए. कहती हैं गुमराह फिल्म का गाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपने उसे थोड़ा रुला भी दिया. क्या बात है, कोई खास बात जुड़ी है क्या उस गाने के साथ? चलिए, हमने वो गाना आपको डेडिकेट किया और अब आपको बताते चलें कि भाई जो बिग बॉस के चाहने वाले हैं उनको तो इंतजार करना काफी भारी पड़ रहा होगा, क्योंकि इस संडे से बिग बॉस का 20th सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसे एक बार फिर से होस्ट करने जा रहे हैं सलमान खान. और ये शो रात को 9:30 बजे हर रोज कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा, साथ ही साथ जियो स्टार पर भी. सो फर्स्ट टाइम जियो स्टार दिखाएगा इसके एवरी एपिसोड को अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड. तो आप अगर 24 घंटे देखना चाहते हैं कि कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं जब भी अपने फ्री टाइम में, तो आप जियो स्टार पर वो सब भी देख सकते हैं. और आपको बता दें कि जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी.
0: This is Leica Radio.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता की फिल्म पति पत्नी और वो से था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था रविंद्र जैन का और आवाजें थी महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर हॉलिडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप साउथ हॉल ट्रैवल को फोन कीजिए और अपने हॉलिडे बुक कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: जब ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो शैलेंद्र सिंह ही बने थे उनकी आवाज, और ऋषि कपूर और शैलेंद्र सिंह का ये कॉम्बिनेशन आज हमने आपको सुनवाया, क्योंकि आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी जो है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: और आपको याद दिला दें कि जैज एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद आफ्ताब शिवदासानी, सिंगर्स अमन त्रिखा एंड मयूर

0: डी पटालिया, और ये सब होने जा रहा है सैटरडे 3 अक्टूबर एट हैरो आर्ट सेंटर में। टिकट्स बॉक्स ऑफिस से आप खरीद सकते हैं और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: The gold rate is 106.08 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: जी, अब जाने की बेला आ गई है। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार बाली ब्रह्मभट्ट आपका साथ देंगे, लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी सैटरडे वाले शो में, यस अपने शो में, और देखेंगे कल यादें में कौन है और थ्री वर्ड्स गेम में कौन सा गाना होता है और क्या कुछ होता है। तो कल जरूर साथ दीजिएगा और आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए और बस अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे मिलूंगी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी।
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald plastic.com.
5: I happen to happy Bali feeling like a Diwali.
6: It's back and it's bigger.
4: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
4: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: The way is finally over.
9: Ah, ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
11: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji, dusra koi nahi khulega.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट of it.
7: it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
14: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना.
15: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
16: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
15: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
16: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
1: From West Brom to Sparkhill, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Next, Gold Afternoons with Bally Brambat on Leica Radio Midlands.
17: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: क्या कहूँ मैं, इतने अच्छे अच्छे गीत, और मैं सुनते सुनते मुझे लगा कि ये गाना पूरा ही ना हो। आज है जन्माष्टमी। यस, ही इज वर्शिप्ड एज द 8th अवतार ऑफ विष्णु एंड एज द सुप्रीम गॉड इन हिज ओन राइट। आई मीन वाइड डिवाइन क्वालिटीज ऑफ लव, कंपैशन, प्रोटेक्शन, टेंडरनेस। इनका बर्थडे मनाया जाता है बाय हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन कृष्णा जन्माष्टमी अकॉर्डिंग टू द ल्यूनी सोलर हिंदू कैलेंडर, जब लेट अगस्त या अर्ली सितंबर में ऑन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इनका अवतार द बर्थ इन मथुरा, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, एंड अवतार इनका एंड हुआ भालका सौराष्ट्र में। आज की तारीख में वो भालका सौराष्ट्र इज वेरावल इन गुजरात। इनके पेरेंट्स देवकी मदर, वासुदेव फादर, यशोदा फॉस्टर मदर, नंद फॉस्टर फादर। सिबलिंग्स देखे जाए तो बलराम इनका बड़ा भाई, सुभद्रा हाफ सिस्टर, एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ वासुदेव देखा जाए तो। एंड इनके बच्चे प्रद्युमन, सांबा, देन चारुदेशना एंड अदर चिल्ड्रन। चलो हम देखते हैं इनके बारे में। कृष्णा वॉज बोर्न इन मथुरा टू देवकी एंड वासुदेव, बट रेज्ड बाय नंद एंड यशोदा इन गोकुल टू एस्केप हिज मैटरनल अंकल जो थे कंस, किंग कंस। एज टेक्स्ट्स में जो लिखा गया है कि यू नो ही हैड मिरेक्युलस एलिमेंट्स, एन्चांटेड ऑल द गोपीज विद हिज डिवाइन फ्लूट प्लेइंग, एंड रास लीला इन्होंने रचाई, एंड कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए इन्होंने काउंट्स को मारा, एंड ही रिस्टोर्ड ऑर्डर इन मथुरा, एंड देन ही वेंट टू एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ द्वारका, एंड ही प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द कुरुक्षेत्र वॉर, अर्जुन के चैरिटियर बनके, एंड डिलीवरिंग द फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ भागवत गीता। अगर मैं बोलने जाऊं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ऑल आई कैन टेल यू इज श्री कृष्णा के हाथ से बहुत कुछ छूट गया। पहले मां खोई, फिर पिता खोया, फिर नंद यशोदा भी खोए, फिर राधा भी खोई, मथुरा भी खोया, गोकुल धाम भी खोया। नहीं छूटा तो केवल दिव्यता, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्णा उत्सव के प्रतीक है, दुख के नहीं। श्री कृष्णा से बेहतर आपको कौन सिखा सकता है कि सब कुछ खो जाने पर भी खुश कैसे रहा जाए। आप और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मे लॉर्ड कृष्णा फिल योर लाइफ विद लव, पीस एंड जॉय। तो गाने सुनते हैं, दो और गाने हैं, फिर उसके बाद हम ऋषि कपूर जी के बारे में बात करेंगे, एंड विल रिमेंबर हिम ऑन हिज 74th बर्थ एनिवर्सरी। मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: The rates fluctuate and it's recently changed. Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees, just changed. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
3: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: यस, ऋषि कपूर।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: That's right, born in Bombay. That's Rishi Kapoor. We are remembering him very fondly. A great actor who left us very early. On 30th of April 2020, at the age of 67. Nitu Singh, of course, famously, everybody knows the couple, the gorgeous couple, who have done so many songs together. They got married in 1980. And inke do bacche, Ridhima Kapoor Sahani and Ranbir Kapoor. Or पिताजी माताजी ग्रैंडफादर ये सब तो मैं आपको कहूँगा ही नहीं क्योंकि यू ऑलरेडी नो। इसका डेब्यू जब हुआ था एक छोटा सा बच्चा एट द एज ऑफ 3 श्री 420 प्यार हुआ इकरार सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है पर प्यार हुआ वो गाने में 3 साल का एक बच्चा आ गया था। एंड देन मेरा नाम जोकर में एज यंग राज कपूर एंड फिर उसके बाद वो गाना था तीतर के दो आगे तीतर है ना। एंड डिड यू नो तीतर के दो आगे तीतर दैट सॉन्ग वॉज पिक्चराइज्ड एट नल सरोवर इन अहमदाबाद। एंड एज एन एडल्ट फर्स्ट फिल्म मशायर तो नहीं यस विद डिंपल कपाड़िया बेस्ट एक्टर। उसमें भी इन्होंने पोल खोल दी थी बाद में कि 30,000 रुपये लेकर देकर मैंने वो अवार्ड लिया था। अब वी वोंट गो इनटू द कंट्रोवर्सीज बिटवीन 1973 एंड 2000 92 फिल्म्स एज लीड रोमांटिक लीड रफू चक्कर कभी कभी लैला मजनू अमर अकबर एंथनी हम किसी से कम नहीं क्या कव्वाली नहीं सरगम फिल्म ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड। दूसरी एक फिल्म थी चांदनी उसमें भी ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड देन नसीब फिल्म कातिलों के कातिल पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ प्रेम रोग एंड देन कूली फिल्म नगीना हेना दीवाना विद शाहरुख खान बोल राधा बोल आपने सुना वो हांडी वाला गाना जो एंड दामिनी अभी आपने गाना सुना बड़े दिल वाला उसमें नॉमिनेशन मिला था उनको। जी हाँ खेल खेल में कर्ज ही गॉट लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर दीज फिल्म्स यू नो खेल खेल में कर्ज टीना मुनीम के साथ ये वादा रहा डिंपल आफ्टर 12 इयर्स अगेन ही एक्टेड इन द फिल्म्स सागर तवाइफ फिल्म नसीब अपना अपना घर घर की कहानी हथियार फिर 2000 के बाद ऑफ कोर्स ही वाज टेकिंग ऑल दी सेकेंडरी रोल्स एंड फादरली रोल्स एटसेट्रा 92 फिल्म्स फ्रॉम 1973 टू 2000 51 सोलो फिल्म्स ओनली 11 वर सक्सेसफुल रियली एंड 41 वर मल्टी स्टारर्स 12 फिल्म्स वर टू हीरो फिल्म्स Him being in the lead. वो 12 फिल्मों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो खेल खेल में फिर हम किसी से कम नहीं फिर बदलते रिश्ते आपके दीवाने सागर एंड देन चांदनी अजूबा दीवाना दामिनी गुरुदेव दरार कारोबार मल्टी स्टारर्स में इन्होंने कभी कभी नसीब कातिलों के कातिल कूली दुनिया सितमगर जमाना घर परिवार और डबल रोल्स जो किए थे 3 फिल्मों में एज राजा एंड इंस्पेक्टर

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: Listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. 90s.
1: 90s. Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
2: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा, कितना लुभावना है ये कहना। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से।
0: लाइका फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Laika Radio Punjabi, Laika Radio Mobile App te, laikaradio.com te Alexa, play Laika Radio Punjabi. Punjabi.
1: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
2: Krishna, Krishna, Hare Krishna.
3: Chahakti hai khag, lehrati hai taruvar, hilore maarti hai talaiya. शाम रंग में रंगने को आया जो है सबका कन्हैया. लाइका रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं.
4: लाइका आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज ब्रॉट टू यू बाय आवर न्यू पॉडकास्ट लाइका एक्स्ट्रा. स्ट्रीम इट नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: From Alum Rock to Winson Green, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
2: Leica Radio.
0: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: बेस्ट फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 रुपीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
1: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
2: London, get ready for an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
6: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन।
7: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
8: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
7: Not with SIMZI. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
7: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
8: SIMZI, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SIMZI.com. Terms apply.
9: Yeah. ये है लाइका।

0: रुक। अरे बाबा रुक, इतने सारे मैसेजेस है, रुक जा, मैं पढ़ रही हूँ। रेडियो वाली के नाम इतना सारा प्यार, आई एम सो ऑनर्ड। यू गाइस आर ट्रूली द बेस्ट। शाउट्स टू पूजा, लॉट्स ऑफ लव फॉर गोइंग आउट टू यू एज़ वेल। विश यू सेइंग डोंट वरी रेडियो वाली, इट्स फ्राइडे, यू आर अलाउड टू फील हंग्री एंड हैव अ टेक अवे ट्रीट टुनाइट। थैंक यू।
1: Wally's Fry-Yay Firecracker.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, make every day grand.
3: Lister, Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026, 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes every night from 7 PM at Avanti Field School, Lister. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
7: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
8: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: beautifully portrayed vocally by the one and the only, of course, Shreya Ghoshal ki awaaz. A big congratulations going into the draw for tomorrow morning for the Ashoka Samosa vouchers at daily competition. £50 Amazon voucher is a Devendra Patel. Good luck!
1: Wally's Fry-Yay Firecracker.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स Your travel mantra.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan.
9: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: Listen to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. 90s. 90s. On this week's Laika Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
1: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से को रोक बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है।
0: Laika Extra is here. Search for our podcast Laika Extra on all major streaming platforms. Next, the biggest Asian love songs with Love Sound on Laika Radio Midlands. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Biker Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
1: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरी Day grand.
0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
8: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758. 580-1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
0: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.

0: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस।
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Laika Radio.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me or you.
0: Southall Travel. Atoll protected.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Khatro Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
5: Khatro Ke Khiladi.
0: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: द वॉइस दैट टर्न्ड Love, heartbreak, and memories into timeless songs.
7: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound
7: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
6: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
7: Official radio partner, Leica Radio, Greater Manchester.
0: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the

0: खींचे दिखाओ
1: ये
2: क्या, तुम्हें ढंग की फोटो क्यों नहीं खींच सकते?
1: कहीं हाथ कटे हैं तो कहीं पैर, और इसमें तो मैं लगी नहीं रही हूँ, इतनी मोटी लग रही हूँ।
3: थमाल विद पति पत्नी और पंगा, जल्द ओनली ऑन कलर्स टीवी। पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स।

0: Breaker Radio.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
2: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल protected.
7: Hello UK Golo, Big Boss is back aur is baar sabko milega vardaan of extra jeevan daan tathas too meri jaan extra life extra mauka matlab extra drama aur extra dhoka streaming from 6th September only on Jio Hotstar and Colors.
8: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Bollywood romantic hits throughout the night. This is The Love Sound.